0: का एक रथ ग्रथ वाहो जुग जुग फेर बटाइए ज्ञानी बुझाता है सात जुग रथ संतो का धर्म ग्रथ वाहो काल जुग रथ गन का कूल ग्रथ वाहो महला पहला
1: सम कहे सितंबर स्वामी सच में अच्छे सच रहे सबको ससमावे रिग कह रहे आप पर पहुर राम नाम देवा में सूर नय ले प्रचत जाए नानक तो मुखंतर पाए जुज में जोर छली चंद्राब कान कृष्ण जादम भया पार जात गोपी ले आया बिंद्रा मन में रंग किया कल में वेद थर्पण हुआ ना खुदाई लो भया

मिठत नीवी नानका गुण जगिया सब कोने में आपको पर कोने में ना कोए दर दर राजू तो दीन वे सगोरा हुए अपराधी दूना निवे है जो हंता मिल गए शीश न क्या थी जर दे कुछ दे जाए महला पहला पड़ पु

0: पौड़ी साहिब होए दयाल कृपा करे ता साई कार कुराए सी सौ सेवक सेवा करे जिसनु हुक्म मनाए सी हुक्म न होवे परवान ता कसमे का महल पाए सी कसमे पावे सो करे मन हो चुदया सो फल पाए सी ता दरगे पैंदा जाए सी ता दरगे पैंदा जाए सी
1: कोई गावे रागी नदी बेदी बपांत कर।

बधे जमपुर जाए महला पहला सबो सतक ब्रह्महल दूजे लगे जाए जमण मरना हुक्म है फाणे आवे जाए खाना पीना पवित्र है दितों रजक संभाहे नानक जिनी गुरमुख बुझया तिना सूतक नाए पाड़ी सतगुर वड्डा कर सलाही।

पहला सुचा आप हुए सुचे बैठा आए सुचे गिर खियों कोई ना पिटे हो जाए सुचा हुए के जेवे अलग अपन श्लोक कहो थी जाई सटे।

ही करना क्यों कलाप ही ते तारीए, देखे किता अपना तर्क अच्छी पक्की सारी है, जो आया सो चल सी सब कोई आई वारी है, जिसके जी प्राण है क्यों साहिब मनो विसारी है, अपन हती अपना आपे ही का

देग तेग फतह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालस जी के बोल बल बोलो जी वाहे गुरु बोलो जे सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान बिवेक दान विसाह दान प्रसा दान सिरदान नाम दान श्री अमृत सर साहिब जी दे दर्शन इशनान चौंकिया झंडे बुंगे जुग जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहे गुरु बोलो जे सिखा दा मन नीवा मत उची मत पत दा रख आप वाहे गुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दातार जियो श्री ननकाना साहेब अते होर गुरद्वारे गुर धामां दे जिन्हां तों पंथ नूं भी छोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार

एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद चक्र चिहन अर बरन जात अर पात नहिं जेहे रूप रंग अर रेख पेख को कह न सकत केहे अचल मूरत अनुभव प्रकाश अमितोज कहिजै कोट इंद्र इंद्रान साह साहन गणिजै त्रिभुवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन त्रिण कहत सर्वनाम कथय कवन कर्म नाम वर्णत समत जग और न जाहे मह तम मैं अवतार जागर आन किया तिनके दुख कोटिक दूर गए मथुरा जिन अमृत नाम पिया यह पद्धत ते मत चुकह रे मन भेद विभेद न जान बिया पर तच्छ हृदय गुर अर्जन कै हर पूर्ण ब्रह्म निवास लिया दिलो मोहब्बत जिन से सच्चिया जिन मन होर मुख होर से कांडे कच्चिया रतिश्क खुदाए रंग दीदार के विसरया जिन नाम ते पोए पारथिए आप लिए लड़ लाए दर दरवेश से तिन तन जने दी माओ आए सफल से परवदगार अपार अगम बेअंत तू जिन्ना पछा

दी दया करो मेरे साई, नानक का जियो पिंड गुरु है, गुर मिल तृप्त अगाई, नानक का प्रभु पूर रहयो है, जत कत तत गोसाई, नानक का जियो पिंड गुरु है, गुर मिल तृप्त अगाई, नानक का प्रभु पूर रहयो है, जत कत

0: चार छत
1: बड़ी बड़ी वड्डा पार तेरा मर्तबा रंग रंग निकला जप करतबा जी अंदर जीव सत जान ला सब तेरा बस तेरा घर पला तेरे करनंद बधाई तुत कर मन महता ते जपना आप जर सर्व कला भरपूर दिस जत कता नानक दासन दास।

माथा तर्थ महत दिवस रात दुविधाई दया खिलै सगल जगत चंगियाइयां बुरियाइयां बच तरमहरो करमी आपो अपनी के नेड़े के दो जिन्नी नाम ते आया गए मुसक्कत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी ना जिन्नी नाम ते आया गए

माता तरतम हत दिवस रात दोयदाई दाया खिले सगल जगत चंगियाईया बुरियाईया वच धर्म हदूर करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर जिन्नी नाम ते आया गए मसकत कहा नानक

गए मसकत नानक ते मुख उजले केती छुटी ना। वाहे गुरु जी का वाहे गुरु जी की फतेह। Thank you.

0: कृष्ण तिहैया बिसुखे तब जाय। एक भक्त प्रिय घर का विद्या में ताहे सब नाई मेरे सहाय भक्त भी पाता है। श्री गुरु गोबिंद सिंह लाल जी सब नाई मेरे सहाय सदा भक्त कल्याणी को श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पास इराज आ ज्ञान धर के बोलो जी।
1: No, no.

दुख दारू सुख रोग भया दास ताम न हो। तू करता करना मैं नाही जाहो करी न होई। बलिहारी कुदरत वस्या तेरा अंत न जाय लख्या रहा। जात मह जोत जोत मह जाता अकल कला भरपूर रहया। तू सच्चा साहिब सिफत सवाल्यो जिन की ती सो पार पया। कहो नानक करते किया बाता जो कुछ करना।

सब सुरति मेल सुरत कमाई सब कीमत मेल कीमत पाई ज्ञानी ध्यानी गुर गुरहाई कहन न जाई तेरी तिल वडियाई सब सत सब तप सब चंगियाई आ सिद्धा पुरखा किया वडियाई आ तुद वेणा सिद्धि के नैना पाइया करम मिलै नाही ठाक रहाइया आखण वाला क्या विचारा सिफती भरे तेरे भंडारा जिस तू देह तिसै क्या चारा नानक सच सवारण हारा आसा महला पहला आखा जीवा विसरै मर जाओ आखण औखा साचा नाओ साचे नाम की लागै भूख उत भूख है खाए चलियह दुख सो क्यों विसरै मेरी माई साचा साहिब साचै नाय रहाओ साचे नाम की तिल वडियाई आख थके कीमत नहीं पाई जे सब मिलकै आखण पाहे वड्डा न होवै घाट न जाए ना ओह मरै न होवै सोग देदा रहै न चूकै भोग गुण एहो होर नाही कोय ना को हुआ ना को होए जे वड आप ते वड तेरी दात जिन दिन करकै कीती रात खसम विसारह ते कम जात नानक नावै बाज सनात राग गुजरी महला चौथा हर के जन सतगुर सत पुरखा बिना करो गुर पास हम कीरे किरम सतगुर सरणाई कर दया नाम परगास मेरे मीत गुरदेव मोको राम नाम परगास गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई हर कीरत हमरी रह रास रहाओ हर जन के वड भाग वडेरे जिन हर हर सरधा हर प्यास हर हर नाम मिल त्रिपता सह मिल संगत गुण परगास जिन हर हर हर रस नाम न पाया ते भाग हीन जम पास जो सतगुर सरण संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास जिन हर जन सतगुर संगत पाई तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास तन तन सत संगत जित हर रस पाया मिल जन नानक नाम परगास राग गुजरी महला पंजवा काहे रे मन चित वह उद्दम जा आहर हर जियो परया सैल पत्थर मह जंत उपाई ताका रिजक आगे कर धरिया मेरी माधव जी सत संगत मिले सो तरिया गुर प्रसाद परम पद पाया सूके काष्ट हरिया रहाउ जनन पिता लोक सुत बनता कोई न किस की धरिया सिर सिर रिजक संभाहे ठाकुर काहे मन भउ करिया ऊडे ऊड आवै सै कुसा तिस पाछै बचरी शरिया तिन कमन खलावै कमन चुगावै मन मह सिमरन करिया।

सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगम अगम अपारा सब त्यावह सब त्यावह तुध जी हर सच्चे सिरजन हारा सब जिया तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर त्याव हो संत हो जी सब दुख विसारण हारा हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंतर सर्ब निरंतर जी हर एको पुरख समाना।

तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू निह चल करता सोई तुद आपे पावै सोई वरतै जी तू आपे करह सोई तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी तुद आपे सिरज सब गोई जन नानक गुण गावै करते के जी जो सब सह का जान ओई आसा महला चौथा तू करता सचियार मैं डासाई जो तौ पावै सोई थीसी जो तू देह सोई हौ पाई रहाओ सब तेरी तू सब नी त्याया जिसनो कृपा करह तिन नाम रतन पाया गुरमुख लाधा मनमुख गवाया तुद आप विछोड़िया आप मिलाया तू दरिया सब तुझ ही माहे तुझ बिन दूजा कोई नाहे जी अजंत सब तेरा खेल विजोग मिल विछुड़िया संजोगी मेल जिसनो तू जाना एह सोई जन जाने हर गुण सद ही आख वखाने जिन हर सेवया तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया तू आपे करता तेरा किया सब होए तुद बिन दूजा अवर न कोए तू कर कर वेखह जानह सोए जन नानक गुरमुख प्रगट होए आसा महला पहला तित सरवरड़ पई ले निवासा पानी पावक तिन है किया पंक जो मोह पग नहीं चाले हम देखा तह डूबियाले मन एक न चेतस मूढ़ मना हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहाओ ना हो जति सती नहीं पढ़िया मूर्ख मुगदा जन्म भया प्रणवत नानक तिन की सरणा जिन तू नाही विसरिया आसा महला पंजवा भई परापत मानुख देहरिया गोबिंद मिलन की एह तेरी बरिया अवर काज तेरा कितै न काम मिल साध संगत भज केवल नाम सरंजाम लाग भवजल तरन कै जन्म वृथा जात रंग माया कै रहाउ जप

एक ओंकार श्री वाहे गुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबियो बाच बेनती चौपाई, हमरी करो हाथ दै रक्षा, पूर्ण होए चित्त की इच्छा। तब चरणन मन रह हमारा, अपना जान करो प्रतिपारा। हमरे दुष्ट सब तुम कावह, आप हाथ दै मोहे बचावह। सुखी बसै मोरो परवारा, सेवक सिख सब करतारा। मोर अच्छा निज कर दै करियै, सब बैरन को आज संगरियै। पूरन होए हमारी आशा, तोर भजन की रह प्यासा। तुम है शाड़ कोई अवर न त्याऊं, जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारिय है। आप हाथ दै मुझे उबरिया, मरण काल का त्रास निवरिया। पूजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुझ जू करिया हो रक्षा। राख ले हो मोहे राखन हारे, साहेब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पूरी चतुर्दश कंता। काल पाए ब्रह्मा बाप तरा, काल पाए शिव जू अवतरा। काल पाए कर बिसन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जू थियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जशन उपजायो। आदि अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझिया हो हमारा। नमस्कार तिसही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। सेवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को पल मोह बद कियो। काट काट के अंतर की जानत, पले बुरे की पीर पशानत। चीटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाना, काट काट के पट पट की जाना। जाब उद करख करा कर तारा, प्रजा तरत तब देह अपारा। जाब आ करख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ। जेते बदन सृष्ट सब तार, आप अपनी बूझ उचार। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत बेद भेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंब, आदि अनिल अनादि असंभ। ताका मूड उचारत पेदा, जाको पेव न पावत बेदा। ताको कर पाहन अनुमानत, महामूड कश पेद न जानत। महादेव कौ कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत नह पेव। आप अपनी बुद्ध है जेती, बरनत पिन पिन तोहे तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, केह बेद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा, रंक पयो राव कही पूपा।
अंडज जेरज सेतज कीनी ओत पुज खान बहुर रच दीनी कहो फूल राजा हुआ बैठा कहो समट पहो संकर इकैठा सिगरी सृष्ट दिखाए अचंभव आदि जुगादि स्वरूप स्वयं भव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संगर दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलीश करो रण काता जे अस तुज तब सरनी परे तिनके दुष्ट दुखित हुआ मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार त्याय है ताकि काल निकट न है रक्षा होए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट टर तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहे निहर हो ताकि ताप तनक मह हर हो रिद्ध सिद्ध कर्म सब होई दुष्ट शाह श्वै सकै न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फास ते ताहे उबारा जिन नारो नाम तिहारो कहा दारिद

सवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आँख तरे नहीं आने ओ राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक न माने ओ सिमृत शास्त्र वेद सब बहु भेद कह हम एक न जाने ओ श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं ना कहे सब तो हे।

लाज आस गोविंद दास तुहार सगल द्वार कौषाढ़ के गहियो तुहार द्वार बाहि गहे की लाज आस गोविंद दास तुहार राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पाया मेरी माई सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज सेती मन वजिया वादाईया राग रतन परवार परिया शब्द गावण आईया शब्दों ता गावो हरी केरा मन जिनी वसाया।

0: जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।
1: बोलो जी वाहे गुरु। एक ओंकार वाहे गुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम।

अर्जन हर गोबिंद नो सिमरौ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आइए जिस डिठै सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै कर नौ निध आवै ताए सब थाई हुए सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई हुए सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धरके बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी। पंजा प्यारिया चौहां साहिबजादिया चालियां मुगतियां हठियां जपियां तपियां जिना नाम जपिया वंड छकिया। देग चलाई तेग वाही देख के अनडिठ कीता। तिना प्यारिया सचियारिया दी कमाई दा ध्यान धरके खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी। जिना सिंघा सिंघणिया ने धर्म हित सीस दिते बंद बंद कटाए। खोपरिया लोहाइया चरखड़िया ते चढ़े आरिया नाल चराए गए। गुरद्वारिया दी सेवा लई कुरबानिया कीतिया धर्म नहीं हारिया। सिखी केसा सुवासा नाल निभाहे तिना दी कमाई।

रावण का सदका सर्ब सुख होवे, जहां जहां खालसा जी साहेब तहां तहां रक्षिया रियायत, देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत, श्री साहिब जी सहा।

विवेक दान विसाह दान पुरुषा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल

आनंद संतन का भगत गोविंद सुख संतन का बिनसी चिंद जह साध संतन हो वह एकत्र

मेरा गुणे अवगन ना विचारो कोई, माटी का क्या तुप है स्वामी मानस की गत।

हम अवगुण पर एक गुण नाही, अमृत शाड बिखै बिख खाई। माया मोह भरम पै फूले, सुत धारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तेह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर राम दास राख हो सरनाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर राम दास राख हो सरनाई। सो कह टल गुर सेविया, अहनस सहज दर्शन परसिया। गुरु का जन्म मरण दुख ओ सिफ तख समी, नूर अरसह कुरसह। दृठे सचे पात सह मल जन्म जन्म दी, सजन सचा पात सह सिर सहांदा। जिस पा

सज्जन सच्चा पात साहु सिर सहांद जिस पास बैठिया सोहिया सबना दिसाहो सतनाम श्री वाहे

निःचल राज कमाओ, जिन तुम भेजे तिन्हा बुलाए, सुख सहज स्थिति कर आओ। आनंद मंगल गुण गाओ सहज तुम, निःचल राज कमाओ। तुम कर

नासन भाजन थाके कर मंगल राजा नित बाजे अपना खसम निराजे अस्थिर रह डोल मत कबहु गुर का वचन आधार जय जयकार सगल भूमंडल मुख उज्जल दरबार

0: सच बड़ियाई जिनके जी तिना ही फेरे आपे पया सहाय चार्ज किया करना हार नानक सच बढ़ियाई वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: सिर मस्तक रखिया पार दम हस्तकाया रखिया परमेश्वर है आत्म रखिया गोपाल स्वामी तन चन रखिया जगदीश रह सर्व रखिया गुरु दयाल है पै दुख विनाशन है भगत वशल अनाथ नाथे शरण नानक पुरख चुप है बिलावल महला पंजवा ताती बौ न लगई पार दिन सरनाई चौ गिरद हमारे राम का दुख लगै न पाई सतगुर पूरा पेटिया जिन बणत बनाई राम नाम औखद दिया काल बिलाई रहाओ राख लिए दिन रखन हार सा ब्याद मिटाई कहो नानक कृपा पई प्रभ पे सहाई। सोहिला रागौड़ी दीप की महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद जयकर कीर्ता खिय करते का होए विचारो तित कर गावो सोहिला सिर सृजनहारो तुम गावो मेरे निर्भउ का सोहिला हो बारी जित सोहिला सदा सुख होए रहाओ नित नित जियड़े संभालिन देखेगा देवनहार तेरे दाना कीमत ना पवै सदा ते कवन सुमार संभत साह लिखिया निर्कल तेल देहो सजना सीसड़ियाँ जो होवै साहब त्यों मेल कर करे हो पहुँचा सदड़े नित पवन सदन हारा सिमरी है नानक से दयावन राजासा महला पहला छे कर छे गुर छे उपदेश गुर गुर को बेस अनेक बाबा जयकर करते कीर्त होए सो कर राख बढ़ाई तोय रहाओ विश्वे चसिया घड़िया पहरा इक्की बारी माहो होआ सूरजे को रुत अनेक नानक करते के कीते वेस राग तनासरी महला पहला गगन में थाल राव चंद दीपक बने तारिका मंडल जनक मोती धूप माले आन लो पवन चवरो करे सगल बनराए फूलंत ज्योति ऐसी आरती होए पव कणा तेरी आरती अनाता शब्द वा जंत फेरी रहाओ सहस तव नैन नन नैन है तोहे को सहस मूर्त ननायक तोही सहस पाद जिमिल नान एक पाद गंध वेन सहस तब गंध विचलत मोही सामै ज्योत ज्योत है सोए इस दै चानन सब मह चानन होए गुर साखी ज्योत प्रगट होए जो सुभाव है सो आरती होए हर चरण काबल मकरंद लोहत मनोंदन मोहयाही प्यासा कृपा जल देह नानक सारं को जाते तेरा नाई बासा राह गौड़ी पूर्वी महला चौथा काम क्रोध नगर भव भरिया मिल साधु खंडल खंडा हे पूर्व लिख लिखे गुरु पाया मन हार लिव मंडल मंडा हे कर साधु अंजलि पुन बड़ा हे कर डंडौत पुन बड़ा हे रहाओ ਸਾਕਤ ਹਰ ਰਸ ਸਾਧਨਾ ਜਾਣਿਆ ਤਨੰਤਰ ਹਉ ਮੈਂ ਕੰਡਾ ਹੀ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਚਲੈ ਚੁਬਹਿ ਦੁਖ ਪਾਵ ਹੈ ਜਮਕਾਲ ਸਹਿ ਸਿਰਡੰਡਾ ਹੀ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਣੇ ਦੁਖ ਜਨਮ ਮਰਨ ਪਉ ਖੰਡਾ ਹੀ ਅਵਿਨਾਸੀ ਪੁਰਖ ਪਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਸੋਭ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾ ਹੈ ਹਮ ਗਰੀਬ ਮਸਕੀਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ ਹਰ ਰਾਖ ਰਾਖ ਵੱਡ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਉਧਾਰ ਟੇਕ ਹੈ ਹਰ ਨਾਮੇ ਹੀ ਸੁਖ ਮੰਡਾ ਹੈ ਰਾ ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ ਸੰਤ ਟਹਿਲ ਕੀ ਬੇਲਾ ਇਹਾਂ ਖਾਟ ਚਲਹੋ ਹਰ ਲਾਹਾ ਗੈ ਬਸਨ ਸੁਹੇਲਾ ਔਦ ਘਟੈ ਦਿਨ ਸੁਰੈਣਾ ਰੇ ਮਨ ਗੁਰ ਮਿਲ ਕਾ ਸਵਾਰੇ ਰਹਾਉ ਇਹੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿਕਾਰ ਸੰਸੇ ਮਹਿ ਤਰਿਓ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਿਸੇ ਜਗਾਏ ਪੀਆ ਵਹਿ ਰਸ ਅਕਤ ਕਥਾ ਤਿਨ ਜਾਨੀ ਜਾ ਕੋ ਆਏ ਸੋਈ ਵਿਹਾਜ ਹੋ ਹਰ ਗੁਰ ਤੇ ਮਨੇ ਬਸੇਰਾ ਨਿਜ ਕਰ ਮਹਿਲ ਪਾਓ ਸੁਖ ਸਹਿਜੇ ਬਹੁਰ ਨਾ ਹੋਏ ਗੋ ਫੇਰਾ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਮਨ ਕੀ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹ

अब गुरु रामदास को मिली बढ़ाई। निमाणियों के मान गुरु ने ताणियों के ताण गुरु ने ओटियों की ओट गुरु ने आसरियों के आसरा तन तन।

0: सोई मन पायो, कर कृपा हर नाम दिवायो। सर्व सुख हर नाम वडाई, गुर प्रसाद नानक मत पाई।
1: श्लोक पवन गुरु।

पौड़ी अपने आप सज अपने रचनाओ दुई कुदरत साजे कर आसन ठचाओ दाता करता आप तो तुस देवे करे पसाओ तू जानो सबसे दिल ऐसी जिंद को आओ कर आसन ठचाओ कर आसन ठचाओ।

0: पहला पढ़ पढ़ कड़ी लदी है पढ़ पढ़ भरी है साथ पढ़ पढ़ बेड़ी पाई है पढ़ पढ़ कड़ी है खात पढ़ी है जेते बर्त बर्त पढ़ी है जेते मास पढ़ी है जेती अर जा पढ़ी है जेते सास नानक लिख है एक गल होर हो मैं चकना चाक महला पहला
1: लिख लिख पढ़िया ते ता कड़िया बो तीत भव्या ते तो लव्या बो पे किया दे दुख दिया सहो वे जी अपना किया अन्न ना खाया साध गवाया बो दुख पाया दूजा पाया

गोर रामदास कार किया परगासा, सागल मनोरथ पूरी आशा। तै जनमत गुरमत ब्रह्म पछाण्यो, कल जोड़ कर सुजस वखाण्यो।

चित सन्मुख रहो कल युग जहाज अर्जुन गुरु सकल सृष्ट लग बेतरो तेह जन जाचो जगतर पर जानियत बासुर रैन बास जाको हित नाम स्यो परम अतीत परमेश्वर के रंग रंगियो बासना ते बाहर पै देखियत धाम स्यो अपर परंपर पुरख स्यो प्रेम लागियो बिन भगवंत रस नाही और काम स्यो मथुरा को प्रभ सर

0: सभैमन इंद्र महाशिव जोग करे हुन वेद बरंच विचार रहो हर जाप न छाड़ियो एक करी मथुरा जन को प्रभ दीन दयाल है संगत सृष्ट निहाल करी रामदास गुरु जगतारन को गुरजोत अर्जुन महे तरी जग और न जाहे महात्म में अवतार उजागर आन कियो तिनके दुख को टिक दूर गए मथुरा जिन अमृत नाम पियो ए पद्धत ते मत चुक कह रे मन भेद विभेद न जान बियो पर तछिरदय गुर अर्जन कै हर पूरन ब्रह्म निवास लियो।
1: जब लो नहीं भाग लीला रुदे तब लो प्रमते फिरते बोतायो कल कोर समुंदर मैं बूढ़ थे कब हूँ मिट है नहीं रे पछतायो।

सुकह टल गुर सेविया अहनिस सहज सुपाई दर्शन परसया गुरु का जन्म मरण दुख जाय होवे सिफत खसंदि नूर अरसो कुरसो चटिया तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया सज्जन सच्चा पातशाह सिरशाह दशाह जिस पास बैठिया सोहिया सबना दावेसा सज्जन सच्चा पातशाह सिरशाह दशाह जिस पास बैठिया सोहिया

सहज समावै ता हर मन भावै सदा अतीत बैरागी हलते पलते सुबह जग अंतर राम नाम लिव लागी हरख सोग दुहती मुक्ता जो प्रभु करे सो पावै सत्संग।

सदा रहै कर जोड़, प्रभु मन पाया जियो। प्रभु मन पावै ता हुक्म समावै, हुक्म मन सुख पाया। अन दिन जपत रहै दिन राती,

बोलो जी वाहे गुरु। एक ओंकार वाहे गुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती स्मरु कै गुरु नानक लैंते आए। फिर अंगद गुरु ते अमरदास। राम दास हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो स्मराओ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आई है जिस डिठे सब दुख जाय। तेग बहादुर स्मरे है कर नौ निधि आवै ताय। सब थाई हुए सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी। सब थाई हुए सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत श्री